सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 24 जून 2026 बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:28 पर।

इंसान कठोर हृदय वाला बनकर चारों ओर भय का वातावरण पैदा कर रहा है। महापुरुष इसकी भावनाओं को बदलकर इसे समझाते हैं कि मानव तू किसी का बुरा मत मांग, तू किसी का बुरा मत कर, तू धरती को नरक मत बना, इसके बजाय तू दूसरों का ख्याल कर, इंसानियत को अपना कर, मानव की दिल से कदर करते हुए तू दूसरों को चैन सुकून देने वाला बन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान असाधारण और मधुर आवाज वाले कलाकार पर आधारित है आज का प्रोग्राम सुनहरे पल। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। महान अभिनेता एवं गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर कुमार की तरह ही गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की चाह लिए किशोर कुमार 18 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके थे और वो चाहते थे किशोर कुमार भी अभिनेता बने, मगर किशोर कुमार को अदाकारी के बजाय प्लेबैक गायक बनने की चाह थी।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में सहगल की अंदाज में गाने का मौका मिला। फिल्म लड़की बतौर अभिनेता उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों दूर गगन की छाओ में, दूर का राही, चलती का नाम जिंदगी जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वह एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात थी कि वो महिला गायक की आवाज में भी गा सकते थे। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ संवरिया।

0: गरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

0: संवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ संवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ संवरिया।
3: किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में देकर अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। 1957 में आशा, 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1968 में पड़ोसन जैसे फिल्में दे दी। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वह अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वह अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उससे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वह कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वालों की बात ही न सुनते थे। लेकिन बाद में ये गाना 5 रुपए और 12 आना काफी हिट हुआ था।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा।

0: बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है कि जब निर्माता निर्देशक H.S. रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे तभी किशोर कुमार ने उसके हाथ पर काट लिया।
1: हम थे वो थी हम थे।

0: यानि यानि प्यार हो गया।
1: बताया जाता है कि किशोर कुमार बहुत ही मूडी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार दोस्त से कहा कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे।

0: किशोर कुमार की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना, जरा रुक जाना।

किशोर कुमार ने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गीत गाए। इन गीतों में हमें चले हो कहां करके जी बेकरार, बागम बाग, मन बावरा, निस दिन जाए, रागनी है दास्तान तेरी ये जिंदगी, शरारत और आदत है सबको सलाम करना और प्यार दीवाना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए गीत गाने के वास्ते महज 1 रुपया परिश्रमिक लिया करते थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था, तब वे स्टेज पर कार्यक्रम पेश करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। मुंबई में आयोजित एक ऐसे ही स्टेज कार्यक्रम के दौरान संगीतकार ओपी नायर ने जब उनका गाना सुना तो उनसे प्रभावित होकर कहा, महान प्रतिभाएं तो अक्सर जन्म लेती रहती है, लेकिन किशोर कुमार जैसा पार्श्व गायक हजार वर्ष में केवल एक ही बार जन्म लेता है। उनके इस कथन का उनके साथ बैठी पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी समर्थन किया।

वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वे अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए बहुत गाने गाए। इनकी मृत्यु पर राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी आवाज़ चली गई।

पे। किशोर कुमार जैसे सदाबहार कलाकार कभी विदाई नहीं लेते, कभी अलविदा नहीं कहते। वे अपने निस्वार्थ योगदान के कारण हमारे दिलों में जीवित हैं। वे चिरस्थायी और कालजयी है और उनके गीत थके हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना कभी नहीं छोड़ते।

0: है।
1: इसके साथ ही इस कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ और अगले अंक में किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक किशोर कुमार पर आधारित था। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोफोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: अरे यार बिना सब जग अंधियारा कैसे पूरन माशी।
1: इश्क मुश्क ना छुपते यारो ना ही फूल गुलाबी।
0: अरे जिसको चढ़े शराब इश्क की वो है।

0: मर जाने तैनू मर जाने इश्क दिया
1: यार अब किसी का इस दुनिया में यार अब किसी का इस दुनिया में इश्क न हो नाकाम।

रेडियो विविधता के सभी चाहने वालों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। लघु कथा की श्रृंखला में आज एक और सुंदर लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और दोस्तों, लघु कथा सुनने के पश्चात हमें बताइए भी कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई लघु कथाएं आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं और किस प्रकार की लघु कथाएं आप और ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। एक बेहद खूबसूरत महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं है। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हो रही थी। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से

सीट बदलने का आग्रह किया। असहज हुई हेयरस्ट ने पूछा, मैम क्या मुझे कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, इसलिए मुझे कोई दूसरी सीट दे दीजिए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई, पर कोई भी तो खाली सीट उसे नहीं दिखाई दी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में और कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूं, आप तब तक थोड़ा तसल्ली रखिए। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद लौटने पर उसने महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वो प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई। किंतु इसके पहले कि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ी और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। ये बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वो अति सुंदर दिखने वाली महिला तो शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब तक उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी, तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए। लेकिन जब आप लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वो प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सिर झुकाकर अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, अगर विचारों में उदारता नहीं है ना, तो सुंदरता का तो कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए बेशक बाहरी सुंदरता हो या ना हो, आपके विचारों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

रात की मुसाफिर फिरते हैं डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर गर कोई पुकारता। अपनी सोहबत में रख कर ये जानने की कोशिश करता कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है।

बिखरती हैं तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में छुपती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है, यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाते हैं, यूं ही बेवजह।

यहां अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

सफर है मुरादों का और अपने सजदों में खुदा को ढूंढते रहे, पर ना खुदा ही मिला और ना ही हम सफर। आरज़ुओं में शिद्दत तो थी जरूर, पर इबादत बेअसर साबित हुई। अब अपने खत्मे सफर में कुछ ऐसी देर नहीं, जो देर है तो फकत थक के बैठ जाने की।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका मस्ती वाला रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों का एक नया एपिसोड। इस शो में मेरा साथ देंगे आरजे शिवानी।
1: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का स्वागत कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। मैं आरजे शिवानी इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: आज के इस शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे जोड़ी की जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई है अपने दमदार संगीत से। जानेंगे उनके जिंदगी के बारे में और हम सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों के सफर में। आज हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने वरिष्ठ संगीतकारों की खिदमत की, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हीं को टक्कर दी और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए सभी स्थापित और ताकतवर फिल्म निर्माताओं को अपना मुरीद बना लिया। बॉबी, हीरो, सरगम, एक दूजे के लिए जैसी प्रेम कहानियों से इस जोड़ी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया था, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। यह अलग बात थी कि लक्ष्मीकांत का बचपन विले पार्ले मुंबई का एक उपनगर की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 सालों तक हुसैन अली से फिर बालमुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन का प्रशिक्षण लिया। बाद में हिंदी फिल्म की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगत राम के हुसनलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बहुत ही संगीत भरा गाना फिल्म एक दूजे के लिए से 16 बरस की भाली उम्र।

0: 40 और 50 के दशक में हुसैनलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी उनकी शागिर्दी की। इस जोड़ी के चांद 1944 में बनाए एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाने का कमाल यह था कि इसके बाद दर्द भरे गानों का दौर ही शुरू हो गया था। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनोहिन के भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया।
1: साथ ही एस डी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। वादकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर किस्मत आजमाई, मगर वहां भी हालत ऐसी ही थी। सो दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। वो फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो सपना सच करेंगे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना जिसका संगीत इस महान जोड़ी ने दिया है और गाने के बोल है वो है जरा खफा खफा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आज मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अलग अलग सोच रखते थे। लक्ष्मीकांत संगीतकार बनना चाहते थे और प्यारेलाल बाहर जाना चाहते थे एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए। दोनों के सपने टकराए, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती ने जोर मारा तो लक्ष्मीकांत जिद पर अट गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देख प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की यह दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में रफी किशोर के गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा की तरह 3.5 दशक तक अखंड रहे।
1: लक्ष्मी प्यारे वादक से सहायक बने और फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। आखिर 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें खूब समझाया कि छोटे बजट की फिल्म उनके करियर को खराब कर सकती है, मगर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मी प्यारे की गाड़ी चल निकली। 1964 में इस जोड़ी को राजश्री प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा रहे थे। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी और आखिर बाजी मारी दोस्ती ने। इस टीम ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया था।
0: मामला यही नहीं रुका, जो मनोज कुमार और मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी को अपने फिल्मों का संगीतकार बनाते रहे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार रहे शोमैन राज कपूर ने भी जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दिया और उनका साथ प्रेम रोग तक चलता रहा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो इस संगीतकार जोड़ी की जिंदगी के साथ जुड़ा है और इन्होंने इस गाने का संगीत भी दिया है। सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वे घर घर जाते थे जब कभी भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता और साथ में प्यारे को भी ले जाते। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे की वॉलिन वादन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनको 500 रुपए का इनाम दिया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वॉलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन उन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 3 रुपए मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था।
1: प्यारेलाल जी ये कहते हैं, मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मदरिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहां मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैंने सब कुछ सहकर वहां पे टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया और उसका जिम्मा उठाया, और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। बहुत कम लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को अपनी शिक्षा देते हैं और उनको सही रास्ते पर डाल लेते हैं। आइए सुनते हैं एक बहुत ही मनमोहक गाना जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने दिया है, फिल्म एक दूजे के लिए, और गाने के बोल है तेरे मेरे बीच में।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता, उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल जी का असली नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है, जिनको प्यार से प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि मुंबई और कर्म क्षेत्र है संगीतकार। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूं। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। चेन्नई में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जैमिनी गणेश, वैजंती माला और सावित्री, जिसके हमें 6,000 रुपए मिले थे। यह पहली बार था जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत 1200 रुपए थी।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने दिए। इनमें से कुछ है सावन का महीना फिल्म मिलन, दिल विल प्यार व्यार फिल्म शागिर्द, बिंदिया चमकेगी फिल्म दो रास्ते, महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, डफली वाले फिल्म सरगम, तू मेरा हीरो है फिल्म हीरो, यशोदा का नंदलाला फिल्म संजोग, चिट्ठी आई है फिल्म नाम, 1 2 3 फिल्म तेजाब। आइए सुनाती हूँ इन्हीं का एक मनमोहक गाना, जो है महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।
2: उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा।

0: लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे जाकर वादी यंत्र मेंडोलिन बजाने की शिक्षा बाल मुकंद इंदौरकर से ली।
1: लक्ष्मीकांत पैरेलल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने फिल्म मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। सभी सुनने वालों के लिए पेश करते हैं इनका एक और मशहूर गाना, जिसके बोल है, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।

आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर, जिसका नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। इस सफर में मैं भारत सोपोरी आपके साथ हूं और मेरा साथ दे रही हैं आज शिवानी। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। 70 और 80 के दशक में LP का सामान्य अर्थ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी लिया जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में LP ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के इस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया। वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसे हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ही शायद अकेले ऐसे शीर्षस्थ संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। LP की तुलना में हम शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद के सदाबहार युगल अवधान को याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीत की साम्राज्य की ये प्रभावी तिकड़ी का फिल्म संगीत में अलग ही स्थान था। आइए हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं इस मनमोहक जोड़ी का संगीत माय ये गाना जिसके बोल है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्णप्रिय व ऑर्केस्ट्रेशन से सजे गीत से बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि 1963 से एकाएक मुख्य धारा में शामिल होने वाली यह संगीतकार जोड़ी जैसे प्रतिभा की प्रचुरता को अपने साथ तूफान की तरह लेकर आई। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाने का काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जुबीन मेहता से बुरी तरह प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया एवं सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था।
1: इसी तरह मदन मोहन वाली हकीकत के गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था मैं प्रयुक्त वायलिन प्यारेलाल ने ही बजाया था। आज भी संगीत के अधिकांश जानकारों के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बेहतर ऑर्केस्ट्रेशन की तमीज शायद ही किसी दूसरे संगीतकार के यहाँ मिलती है। आइए सुनते हैं इनका वो गाना जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। सुनते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

है कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता रामप्रसाद एक बेहतरीन वॉयलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वॉयलिन एवं पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और पांचवें दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र, नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी के बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है। इसी के साथ सुनाते हैं इस मशहूर जोड़े का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसके बोल हैं पत्थर के सनम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के उत्तरार्ध में अधिक सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने एवं स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सार्थक अवधान की सूची भी शायद इसलिए बेहद लंबी होगी जिसमें सभी का जिक्र या नमोलेख कर पाना एक अध्याय की सीमा से परे की चीज लगती है। फिर ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि साधारण या विशुद्ध रूप से फ्लॉप किसी फिल्म में यदि लक्ष्मी प्यारे मौजूद हैं तो शर्तिया वहां एक गीत ऐसा अवश्य होगा जो ठीक ढंग से संगीत प्रेमियों के बीच में चर्चा में आया होगा।
1: यह भी संभव है कि उसकी लोकप्रियता रेडियो पर बजकर या रिकॉर्ड व कैसेटों की उल्लेखनीय बिक्री से पुख्ता तौर पर बनी होगी। इसी कारण वह गीत निश्चित ही अपनी फिल्मों की असफलता से निरपेक्ष रहते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत प्रतिभा के सामर्थ्य को व्यक्त करता रहा होगा। इसलिए हमें एलपी के संगीत पटल को पूरी तरह किसी फहरिस्त में बांधकर रख पाने में असमर्थ ही दिखाई देते हैं। फिर भी उनकी प्रतिभा का सबसे नायाब नमूना माने जाने वाली कुछ फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो एक अनूठा एलपी टाइप बनाती रही है।
0: इसके साथ ही इस प्रोग्राम का समय समाप्त हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम का हम यही समापन करते हैं। दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बात।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो विदस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं एफएम 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज मैं लाइव हूं आप सभी श्रोताओं के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अम्बाला के लिए स्वीकृत किया गया है और हम बात करते हैं अम्बाला की और हम चाहते हैं कि अम्बाला को विश्व पटल पर रखा जाए। जी हाँ, जब अम्बाला में कोई भी गतिविधि होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप सभी से उनको रूबरू करें। रूबरू इसलिए करेंगे क्योंकि हम सब अम्बाला के वासियों को आगे बढ़ना है हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। और जैसे आप सभी जानते हैं, रेडियो वितस्ता व्यथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अम्बाला चलाती है, जिसका मूल जो वजूद है, जिसका जो बेस है, वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। पर पिछले 36 वर्षों में मैं भारत सोपोरी आप सभी के साथ हूं, अलग अलग विषयों पर बात करता हूं, अलग अलग क्षेत्र में मैंने अम्बाला के लोगों के साथ जुड़ा हूं और आज अब अंततः ये जो आवाज है, अम्बाला के लोगों की आवाज है, उसके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मुझे बेहद खुशी होती है जब अम्बाला आगे की ओर बढ़ता है। आज हमारे पास एक खास और युवा मेहमान हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है, उनके साथ हम जो बात करेंगे वो आपके सरोकार की है और मैं जानता हूं कि आप इस हमारे दोस्त को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आपको मौका भी देंगे, आपको आमंत्रण भी देंगे 28 जून के लिए, ताकि आप वहां पर आए, आप उनके बारे में जाने, उनके जो विविध पहलू है उनको भी जाने, कुछ के लिए हम आज बात भी करेंगे। मेरे साथ आज बहुत ही अच्छे दोस्त, एक कोरियोग्राफर, डांसर हमारे स्टूडियो में है, पर आज वो किसी और विषय के लिए हमने उनको आमंत्रण दिया है और आमंत्रण जो हमने दिया है उस हिसाब से जब हम उनसे बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट पर जो मेरे लिए भी नया है, खास करके हमारे मेहमान के लिए। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़े हैं राहुल। अब राहुल तो बहुत सारे हैं अम्बाला में, पर ये राहुल एक खास व्यक्ति है, खास व्यक्तित्व है, युवा है, ऊर्जा से भरपूर है और उम्मीद करता हूं कि आप भी राहुल जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आइए करते हैं राहुल का अभिनंदन। राहुल जी, आपका स्वागत अभिनंदन एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझ जैसी नाचीज को मौका देने के लिए कि हाँ मैं अपनी बात लोगों के सामने रूबरू रख सकूं। और उसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेडियो वितस्ता सुनने वाले हर श्रोता का कि आप रेडियो वितस्ता को इतना प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है और हर एक आम लोगों के बीच में पहुंच रहा है। सो, मैं राहुल, विरसा जंक्शन डांस अकेडमी का ऑनर, मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नमस्कार, अदाब, सलाम।
0: राहुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक कोरियोग्राफर हैं, यानी कि आप डांस करना सिखाते हैं बच्चों को, बड़ों को। जब आप लोगों को नचाते हैं जी, आपको नचाने वाला कौन है इस धरती पर?
1: सर देखो, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। देखो, आजकल जिसके हाथ में चाबी होती है वो नचा देता है।
0: चलिए कोशिश करेंगे कि हम आपके दिल की बात भी जानेंगे, देखेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको भी नचाएगा, क्योंकि मैंने आपके डांस वीडियोस भी देखे हैं, मैंने आपको बहुत सारा काम भी

0: नंबर एक बार फिर 705641310 फोन। तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान से, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आज के मेहमान से आपको जोड़ेंगे भी। चलिए आज के मेहमान की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, राहुल विरसा जंक्शन चलाते हैं जिसमें वो बच्चों को बड़ों को डांस करना सिखाते हैं, हर एक फुर्ती के साथ डांस करते हैं। खुद भी इनके पास बहुत सारी फुर्ती है और मैंने इनके कई सारे वीडियोस देखे हैं, मैं प्रशंसा करता हूं और मुझे भी एक अच्छे बड़े भाई के तौर से जानते हैं, मान भी देते हैं। तो आज हमने इनको एक अलग विषय पर यहां पे बुलाया है, जानते हैं राहुल से ही। राहुल, आप एक डांसर है
1: जी,
0: फुर्ती है
1: जी,
0: और आप हर एक बीट को पकड़ते हैं और जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं
1: जी,
0: जब आप बड़ों को डांस सिखाते हैं तो आप बड़े बन जाते हैं
1: जी,
0: जब बुजुर्ग लोग आते हैं डांस करने के लिए, क्योंकि मैं, मेरा भी शौक है
1: जी,
0: तो जब आप हमें सिखाते हैं तो आपको उसी लेवल से आदर और सत्कार देना पड़ता है
1: जी।
0: तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कितना आसान है बच्चों के साथ डांस करना, कितना मुश्किल है बुजुर्गों के साथ डांस करना?
1: सर, बच्चों के साथ डांस करना और उन्हें सिखाना बहुत आसान है
0: जी,
1: क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है, वो जिस तरह से उन्हें ढालो वो ढल जाते हैं
0: जी।
1: दिक्कत तब आती है जब मिट्टी पक जाती है
0: जी,
1: क्योंकि वो क्योंकि जब बड़ा कोई डांस सीखने आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपना दिमाग लेकर आता है, बच्चे सिर्फ अपने आप को लेकर आते हैं। ये एक चीज है,
0: यानी कि आपने जो इसकी नब्ज है वो पकड़ी, ये है कि बच्चों को जिस, वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनको जिस रूप में डाला जाए, जिस तरीके से उनको डाला जाए वैसे वो सीखते हैं। वैसे मैंने आपके स्टूडेंट्स को भी देखा, कमाल का डांस करते हैं, चाहे कोई प्रतियोगिता हो और वहां पर मेडल जरूर आपके डांस टीम को मिलता है, और जिस स्कूल के साथ आप जुड़े हैं उस स्कूल के बच्चे तो वैसे भी अंबाला में जुड़े हैं। आप स्कूल के बारे में भी अगर बताना चाहेंगे तो आप कृपया बताएं।
1: जी हाँ सर, उसी स्कूल से मैंने डांस सीखा है
0: जी।
1: मेरे गुरुजी श्री अनिल महंत जी, बिट्टू सर के नाम से जिन्हें सब जानते हैं अंबाला सिटी से
0: जी,
1: उनसे, उनका मैं शागिर्द हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे
0: जी,
1: क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है
0: जी।
1: उनसे ज्ञान मिलता नहीं है, उनसे ज्ञान लेना पड़ता है। वो इशारों में संकेत देते हैं कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, तो वो आपका, आपकी समझ है कि आप उसे कैसे समझते हैं, वो उंगली नहीं पकड़ के लेके चलते। लेकिन एक ये भी बड़ी बात है कि वो ऐसे भी गाइड करते हैं। और स्कूल के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, मेरे दादाजी भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, तो एक हिसाब से हमारा खानदानी स्कूल है और उस पर हमारा हक है, ये हम बात हक से बोलते हैं। और आज मैं उसी स्कूल में डांस टीचर भी हूँ और पिछले 4-5 साल से उसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ एज ए डांस टीचर। और हमारे प्रिंसिपल सर हैं केपी सर, जो कि बड़े भाई हैं और छोटे भाई की तरह मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं, मेरे किसी भी काम को मैं कह दूं तो मना नहीं करते। और बस ये है कि हिम्मत हौसला सब उन्हीं ने दिया हुआ, तो बस चल रहे हैं।
0: चलिए, आपने सीनियर सेकेंडरी फारुका खालसा स्कूल की बात की है
1: जी,
0: हम भी उस स्कूल के साथ जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से, और खास करके जब एपी सर थे तो उनके साथ मेरा व्यक्तित्व, जो जो हमारे, मेरा पर्सनल रिलेशन उनके साथ था, जब मैं जाता था तो वो मुझे बहुत मान सम्मान देते थे और मुझे बहुत ही प्रशंसा करते थे। शायद वो प्रशंसा भी मेरे लिए करते थे कि जो शायद जिसके काबिल में था भी नहीं। पर सबसे बड़ी बात है, जो हमसे बड़ा होता है वो हमें जब हौसला देता है तो हमारी उड़ान और बढ़ जाती है। चलिए, ये तो हो गया आपके प्रोफेशन की बात
1: जी,
0: अब मैं आपकी दिल की बात करना चाहता हूँ
1: जी।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक डांस टीचर, एक डांसर अगर आराम से बैठा है, एक कमरे में बैठा है और शांत बैठा है और उनके हाथ में पेन है और सामने कागज है
1: जी,
0: क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक डांस टीचर भी किसी ख्याल को लफ्जों में उतार सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल सर। देखिए, हर एक चीज की एक रिदम होती है
0: जी,
1: जिंदगी भी रिदम पे चलती है
0: जी,
1: ठीक है। तो एक डांसर होने के नाते मुझे रिदम, मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे दाद बख्शी और ये चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। हालांकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, परिपक्व नहीं हूँ हर एक चीज के लिए, सीखना जारी रहना चाहिए और सीखना अभी भी जारी है। तो धीरे धीरे ये ख्याल उस तरह पहुंच गया कि हाँ, मेरे हाथ में पेन और कागज आया और मैंने कुछ शब्दों पर लिखना शुरू किया। इसका एक बेहतरीन किस्सा है जो मैं, शायद अगर आप इजाजत दें तो मैं शेयर कीजिए।
0: प्लीज,
1: आप सोहन को जानते होंगे, थिएटर आर्टिस्ट है
0: जी, जी।
1: तो ये स्कूल दिनों की बात है, वो मेरा स्कूल फ्रेंड हुआ करता था।

0: तो उसने बोला कि भाई मुझे लव लेटर लिखना है।
1: जी
0: मैं कहा ठीक है भाई।
1: ओह, प्यार के शब्दों को तो और बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा।
0: जी जी जी
1: जी जी
0: तो वो लव लेटर लिखे, पर अगर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत खास लगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको यूनिक आइडिया लगाते हैं। वो यूनिक आइडिया क्या था कि भाई खून से लिखना है। मैंने कहा भाई
1: खून फिर आपका होगा या उनका होगा?
0: उसी बात पे आ रहा हूँ, वो एक फनी सीन है, वो एक फनी सीन है। मैं कहा भाई देख मैं तो दूंगा नहीं खून, तेरे को ही देना पड़ेगा। करा भाई मेरे को भी दर्द होगा। तो मैंने कहा काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है वो मीट शॉप है उसकी, तो जब वो मुर्गा काटता था तो उसने हमने वहां से खून लिया। मगर तू लेकर आएगा। देन कबूतर का पंख था, कबूतर का पंख था, उसे वो लेटर लिखा एंड उसने वो लड़की को दिया, हालांकि उसने रिजेक्ट कर दिया उसे। तो बट ये है कि वहां से थोड़ा सा लिखना शुरू किया इन चीजों को।
1: सबसे बड़ी बात है कि अगर वो शायद अपने खून से लिखता शायद कुछ रिजल्ट आ जाता। खैर वो इस बात पे हम नहीं जाते, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा राहुल के बारे में। राहुल जो है वो, जैसे हमने पहले आपको कहा कि वो एक कोरियोग्राफर है, एक बहुत अच्छे इंसान है, पर हर एक इंसान में एक दिल होता है जो कुछ अलग सोचता है। और जब हम लीक से हट के चलते हैं तो हम डेफिनेटली अपना नाम भी बनाते हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हम अपने प्रदेश के लिए और हम अपने देश के लिए कुछ खास करते हैं। तो आज राहुल को हमने आमंत्रण दिया है क्योंकि राहुल अब केवल कोरियोग्राफर नहीं है, वो एक कोरियोग्राफर नहीं है बल्कि वो एक अब लेखक भी है। वो लिखना जानते हैं, शब्दों का जो उनके पास कोश है, शब्दों का जो कोश है उसको इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया की दुख दर्द, अपने जो भी वो महसूस करते हैं, जो समाज में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कुरीतियां हैं, उनको महसूस करके उन्होंने लिखना शुरू किया। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने एक कविता संग्रह तैयार कर उसको प्रिंट भी कराएगा जो अमेजन पर अवेलेबल है, जहां से हम उसको खरीद सकते हैं। उसके बारे में भी उनसे हम जानेंगे। पर आज मैं राहुल एक लेखक को आमंत्रण एक बार फिर देता हूं, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राहुल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, प्रश्न मेरा आपसे यह होगा कि जब आपने ये लिखना शुरू किया
0: जी,
1: तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया जो आपने लिखा?
0: सर, लिखने के लिए सबसे पहले मैंने एक चीज सोची कि जब आपके भीतर बहुत शोर होता है ना और उस शोर को कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको लिख देना सबसे बेहतर तरीका है। कि कभी ना कभी तो किसी के समझ आएगा। आज आप कुछ चीजें आज लिख दो, वो आपको हो सकता है कि किसी को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ऐसे समझ आए। तो मैंने वो चीजें शुरू की और मुझे करीब 10-12 साल हो गए ये चीजें मैंने हिडन रखी, पहले
1: जी
0: लिखता रहा अपने फोन में रखी, कभी डिलीट हो गई, फिर दोबारा लिखी, तो ये उधेड़ बुन चलती रही। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग मिले ऐसे जिन जो वो भी लिखते थे, उन्होंने भी हौसला दिया कि नहीं आप ये चीज अच्छी लिखते हो, आपको बोलनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा शायर हूं और या कुछ भी हूं, लिखारी हूं एक, बट ये चीजें जब जुड़ती गई तो मुझे थोड़ा थोड़ा हौसला होता रहा कि नहीं शायद मैं भी अपने मन की बात कह सकता हूं, अपने दिल की बात कह सकता हूं। तो वो शायद दर्द लिखते लिखते या अपनी कुछ चीजें साइलेंस, उस साइलेंस जोन को लिखते लिखते मैंने लिखना शुरू कर दिया और आज यहां तक हूं कि मैं अपनी किताब लिख पाया और उसको छपवा पाया, एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।
1: राहुल जी, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो लिखते हैं और लिखने से अपना कविता संग्रह को प्रिंट करने तक काफी समय उनका निकलता है
0: जी।
1: आपने लिखना शुरू किया, किसी को बताया नहीं
0: जी।
1: हम भी आपको जानते हैं एज कोरियोग्राफर ही जानते हैं, बट मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपने मैयार को इस लेवल तक लाया कि आपने शब्दों के बारे में सोचा, लिखा और उसको तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने प्रोत्साहित भी किया
0: जी।
1: और खास करके जब हम एक कविता संग्रह पब्लिश करते हैं तो उसमें एक पब्लिशर का बहुत बड़ा रोल होता है।
0: हाँ जी।
1: मुझे उम्मीद है कि पब्लिशर का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा, उस पर हम बात करेंगे। मगर मैं यहां से बात करना चाहता हूं कि जब हम लेखक बन जाते हैं, आपने एक शब्द यूज किया लिखारी, हम जब हम बन जाते हैं तो हम एक अलग नाम से जाना जाते हैं। क्या राहुल को हम राहुल से ही जानेंगे या किसी और नाम से जानेंगे?
0: सबसे पहले मैंने जो अपना पेन नेम रखा था वो था कि अनहील वाउंड्स
1: जी,
0: वो एक पेज था जिसमें मैं गोस्ट राइटिंग करता था और कुछ एक राइटर्स के लिए भी मैंने गोस्ट राइटिंग करी है। कुछ एक सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी हैं और उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे अपना नाम देना चाहिए। तो मैंने वो नाम फिर अपने शहर को देना सबसे ज्यादा जरूरी समझा। और वो क्योंकि जिस शहर ने आपको पहचान दी हो आपका हक बनता है उसको कुछ ना कुछ वापस लौटाने का। हालांकि सिर्फ नाम ले लेना काफी नहीं है शहर का, उस शहर की इज्जत और उस शहर के मैयार को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए मैंने अपने नाम के साथ राहुल अंबालवी जोड़ा और कोशिश करूंगा कि इस अंबालवी शब्द को मैं अपने नाम से ऊपर ही रखूं हमेशा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा जहां पर इस समय आप FM 90 पर लाइव हैं
0: जी,
1: वो भी इसी अंबाला के लिए काम करता है और इसी अंबाला के लिए जीता है और इसी अंबाला के सभी लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि वो अपनी बात को कह सके। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद हम अब के बाद हम जो आपको संबोधित करेंगे हम आपको राहुल अंबालवी से संबोधित करेंगे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हमने इस अंबाला को विश्व पटल पर रखना है और खास करके जब राहुल अंबालवी लिखेंगे हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप हमारे अंबाला के दुख दर्द को भी लिखेंगे। तो क्या आपके आगे आने वाले विचार है, उसके बाद हम आज के इस कविता संग्रह पर बात करेंगे।
0: एक शेर है जो मुझे लगता है कि मुझसे गलती से अच्छा लिखा गया
1: जी,
0: कि शहर के कुछ पुराने राजदारों में मेरा नाम आता है
1: जी,
0: कि शहर के कुछ पुराने राजदारों में मेरा नाम आता है और मैं वो शख्स हूं जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर काम आता है।
1: क्या बात है।
0: और कि अक्सर मेरी मैयार से मिलते ही लोग जुदा हो जाते हैं
1: जी,
0: कि अक्सर मेरी मैयार से मिलते ही लोग जुदा हो जाते हैं क्योंकि मुझे अपना बनाने के लिए रुतबा नहीं बस टूटा हुआ दिल काम आता है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: चलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा मुझे उम्मीद है कि आप हमें सुन रहे होंगे। अगर आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करना चाहते हैं और राहुल अंबालवी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर बता देता हूं 7056413010। राहुल जी रेडियो में जब साइलेंस होता है, जब हम बोल रहे होते हैं और बोलने के बीच में एक शून्य समय आ जाता है तो रेडियो की भाषा में वो भी एक भाषा है।
0: भाषा जी।
1: तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपका कविता संग्रह है उसका नाम क्या है और जो छपी है उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये विचार आपको कब और कैसे आए?
0: सर काफ़ी टाइम से लिखते हुए काफ़ी चीज़ें थी जो लिखी हुई थी और चाहता था कि इनको एक सही स्वरूप दे सकूं, बट कभी मौका नहीं मिला तो कभी किसी कारणवश वो चीज़ें रह गई मेरे से। तो एक कोमल मैम है आर के पब्लिकेशन से
1: जी,
0: इवेंट्स भी और इवेंट्स ऑर्गेनाइजर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मित्र हैं। तो उनका एक दिन मैंने स्टेटस देखा कि अगर कोई बुक पब्लिश कराना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करे। ऑल्दो मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया तो कभी किसी वजह से रह गया, कभी किसी वजह से रह गया। तो मैंने कहा मेरा फॉर्मेट अभी रेडी नहीं है बुक के अकॉर्डिंग। कह रहे आप कुछ नहीं करना, आप बस मुझे जितना मैटर लिखा आप मुझे बस फॉरवर्ड कर दो मैं अपने आप करवा दूंगी उस चीज़ को। और उन्होंने उनको वो मैसेज किया हुआ अभी तक, उसके बाद से मैंने मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि आपकी बुक आ चुकी है, आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है।
1: अच्छा।
0: उन्होंने जिस जोन से मुझे निकाला, आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कोमल मैम और आरके पब्लिकेशन जिन्होंने इतनी ज्यादा सपोर्ट करी इस चीज के लिए, बहुत जीरो एफर्ट्स वाला मेरे लिए काम बना दिया
1: जी।
0: तो उसके संदर्भ में यही है कि उन्होंने मेरी बुक जो है जिसका मैंने नाम रखा कि हाँ मैं दर्द लिखता हूँ
1: जी,
0: ये मेरी बुक का टाइटल है और आरके पब्लिकेशंस ने इसको प्रिंट किया है।
1: मैं जितने भी हमारे पब्लिशर्स हैं उनको भी साधुवाद देता हूं क्योंकि खास करके एक लेखक जब वो अपनी लेखनी शुरू करता है और उसके बाद उसको किताब का, इसका पुस्तक का या कविता संग्रह का रूप जब देता है उसमें पब्लिशर का बहुत बड़ा योगदान होता है। पब्लिशर ही है जो इस लेखक को दुनिया तक पहुंचाता है और ऐसा नहीं है कि लोग किताबें पढ़ना भूल गए हैं। आज के जो युवा है वो ज्यादातर मोबाइल के चक्कर में किताबें पढ़नी भूल गए हैं। आज भारत सरकार भी रीडिंग कंसेप्ट पर काम कर रहा है और हम रेडियो पर भी इस पर बात करते हैं कि हमें किताबों को पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि किताबें ही हमें इतिहास के साथ भी जोड़ती हैं और किताबें ही हमें आज के साथ जोड़ती है। खैर ये तो बहुत बड़ा विषय है, हम आगे राहुल अंबालवी से बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप महसूस कितना दर्द को करते हैं, आप कि जो ये पुस्तक है
0: जी,
1: क्या हम ये माने कि वो हमारे सारे अंबाला वासियों का दर्द है या सारे अंबाला के रहने वालों की बात है या केवल राहुल अंबालवी की है?
0: सर मुझे लगता है कि दर्द से सरोकार होना ही दर्द को समझने के बराबर है
1: जी।
0: कि अगर वो दर्द अगर किसी और का भी है, चाहे आपका है या मेरा है, अगर वो सुन के मेरे दिल में जब तक कोई हरारत कोई हरकत नहीं होती तो आई थिंक मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा, तो वो शायद कहीं मेरे लिए कमी है
1: जी।
0: आपकी यहाँ इंसानियत कम हो रही है। पहले के लोग दर्द को महसूस करते थे, दूसरे के दर्द में शरीक होते थे, पर आजकल जब से सोशल मीडिया इतना ज्यादा वायरल हुआ है या सोशल मीडिया ने टूल पकड़ लिया है इस चीज का कि इंसानी रिश्ते हर 30 सेकंड बाद हर 10 सेकंड बाद चेंज होते जा रहे हैं, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ ठहराव की जरूरत है और ठहराव तभी आएगा जब आप चीजों को अपना समझ के मानोगे
1: जी।
0: तो यही है कि बस हर दर्द अपना होता है, बस आपकी वजह ढूंढनी चाहिए आपको।
1: और फिर जब लेखक लिखता है तो कोशिश उसकी होती है कि ये दर्द हर एक पढ़ने वाले का अपना दर्द महसूस हो
0: जी।
1: राहुल जी, जब आप बच्चों को डांस सिखाते हैं, क्या आप उनको कुछ इस तरीके का शिक्षा देते हैं कि आपको केवल मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए? क्या आप इस तरीके का भी एक सही दिशा में काम करते हैं?
0: सर मेरे पास मोस्टली पेरेंट्स एडमिशन इसीलिए करा रहे हैं कि अभी समर कैंप जैसे जून की छुट्टियां हैं कि भाई बच्चा फोन कम देखेगा।
1: ठीक है,
0: बच्चा तो फोन तब कम देखेगा जब आप लोग फोन देना बंद करेंगे
1: जी,
0: आप उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं सर, मेरा जब फर्स्ट फ्लोर पे मेरा सिटिंग एरिया है, देन सेकंड फ्लोर पे डांस एकेडमी का एरिया, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे रूम में बुक्स पड़ी हैं जो बच्चों की भी हैं कुछ बड़ी भी हैं, बच्चे आते हैं उन बुक्स को देखते हैं, गिटार पढ़ा है वहाँ पे, हारमोनियम पढ़ा है, तबला पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं बहुत सारे। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे इन चीज़ों से जुड़ें, वो मिट्टी में खेलने वाले बच्चे आजकल खो गए हैं, उनको उनकी जगह मोबाइलों ने ले लिया
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजों से जुड़कर बच्चा कला से जुड़े, और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को इन चीजों पे मजबूर कर देती हैं कि हाँ यहीं से वो चीजें बिल्डअप होती हैं बचपन से ही। हम देखते हैं कि हाँ अगर आज हमारा घर का कोई मेंबर किसी दुख में जा रहा है तो हमें भी जाना है, कल को हम भी वो चीजें सोचेंगे
1: जी।
0: तो ये सब चीजें हैं।
1: तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, हमें बच्चों को इस चीज से दूर रहना चाहिए। हालांकि ये हमारा इसका आज का सब्जेक्ट नहीं है, हमने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम एडिक्शन था और उसमें हमने यही दिखाया था कि एक बच्चा किस हद तक जा सकता है अगर उसको मोबाइल ना मिले। खैर उसमें हमने यही शिक्षा दी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने मोबाइल कुछ टाइम के लिए डिटॉक्स करना होगा, मोबाइल साइड पे रखना होगा, बच्चों के साथ बात करनी होगी, उनको अपने गले से लगाना होगा बिना मोबाइल के, तब जाके बच्चे आगे अपना फ्यूचर बनाएंगे। खैर हम इंतजार में, हमने बातें तो बहुत सारी की, मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर जो आपने ये पुस्तक लिखी है आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे, हमारी श्रोताओं के दिल तक आप कैसे पहुंचाना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म आपका और कविता आपकी
0: जी। एक मेरी कविता का शीर्षक है अगर वो मिले।
1: अगर वो मिले जी,
0: तो कुछ एक हमारे कामों को अक्सर लोग फालतू के काम मान लेते हैं, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, राइटिंग हो गई, सो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो भी किसी के लिए काम है और ऐसे कामों से भी नाम होता है
1: जी।
0: तो उसी चीज के लिए है कि सोचा था कि वो जब मुझसे मिलेगी तो खूब लड़ूंगा,
1: क्या बात
0: है, कि दिल की भड़ास निकाल कर आगे बढ़ूंगा
1: जी।
0: और वो कहती थी कि कुछ नहीं रखा इन कामों में,
1: वो कहती थी
0: कि कुछ नहीं रखा इन कामों में
1: जी,
0: मां कसम अपनी पसंद का सब हर काम करूंगा।
1: वाह वाह क्या बात जी।
0: और चंद लोगों को रुखसत तो किया पर उन्हें कभी अलविदा न कह सका, चंद लोगों को रुखसत तो किया पर कभी उन्हें अलविदा न कह सका, उनसे फुर्सत में कभी तलखियां कहूंगा। और एक तो एक अरसे से कमाना भी शुरू कर दिया है मेरी जान,
1: वाह
0: कि अब तो एक अरसे से कमाना भी शुरू कर दिया है मेरी जान, कि कुछ पैसे बचे रखे हैं, कि कुछ पैसे बचा के रखे हैं, दिल टूटने पर शराब पीऊंगा।
1: क्या बात है, यानी कि आपने समाधान भी किया है और जो आपने हिम्मत दिखाई है, आपने पैसा भी अर्न करना शुरू कर दिया, अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो आप उसका उस पैसे का इस्तेमाल भी करेंगे,
0: बिकॉज एट द एंड जो भी है आपके पास एक ही चीज काम आती है
1: जी राहुल अंबालवी, यानी राहुल जो हमारे दोस्त हैं, हम बहुत खुश हैं राहुल जी आपके इस लेखन पर, और मैं आपको ये वादा देता हूं कि जितनी भी आपकी कविताएं हैं, हमारे रेडियो वितस्ता पे एक कार्यक्रम चलता है वितस्ता गीतमाला, उसमें हम लेखकों की जो कविताएं हैं, गजलें हैं, उनको पढ़ते हैं। मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपके शब्दों को अपनी आवाज देके लोगों तक पहुंचाऊं। आने वाले दिनों में एक एपिसोड होगा वितस्ता गीतमाला का, जिसमें काव्य संग्रह होगा मैं दर्द लिखता हूं। आमतौर पर तो दर्द बोला जाता है
0: जी,
1: तो लिखना और बोलने में क्या अंतर आप समझते हैं?
0: दर्द लिखना और बोलना दोनों अलग चीजें हैं
1: जी, यही मैं
0: जब आप लिखने की बात करते हैं तो आप वो अपने दर्द को कम कर रहे हैं, और जब आप दर्द बोलने की बात करते हैं तो आप अपना भार किसी को दे रहे हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो लेना चाहता है कि नहीं। अगर थोड़े लेगा भी तो थोड़े टाइम तक रखेगा, उसके बाद वो वापस दे देगा, हो सकता है दुगना भी दे, और जब वो दुगना देगा तो फिर आपसे सहन नहीं होता। तो इससे बेटर ये है कि लिख लें। इसी चीज के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि तन्हा छोड़ोगे
1: इरशाद,
0: बहुत शुक्रिया, कि मेरे साथ मोहतरमा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, कि मेरे साथ मोहतरमा ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, तुम पहले शख्स नहीं हो जो मुझे तन्हा छोड़ोगे, और वादे उल्फत वफाओं जफाओं को छोड़कर तुम सिर्फ मजबूरियां जिम्मेदारियां और बातों को आगे पीछे मरोड़ोगे, कि तहरीक में आकर तुम रकीब की मुझे नकारा समझते हो।
1: क्या बात है,
0: कि तहरीक में आकर तुम रकीब की मुझे नकारा समझते हो, हाथ छुड़ा के मेरा तुम गफलत से जमाने की भीड़ में दौड़ोगे।
1: क्या बात,
0: और मेरे साथ घर बसाने की ख्वाहिश थी ना तुम्हारी
1: जी,
0: कि मेरे साथ घर बसाने की ख्वाहिश थी ना तुम्हारी, शौक से बनाए नए घर को तुम अपने ही हाथों से तोड़ोगे, और करेगा वो शख्स भी कब जब कभी तुम्हें परेशान मेरी जान, कि करेगा वो शख्स भी जब कभी तुम्हें परेशान मेरी जान, लड़ोगी उससे मेरी तरह या फिर उसे भी मेरी तरह तन्हा छोड़ोगी।
1: क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया, क्या बात, बहुत शुक्रिया।
1: ये गहराई है, ये गहराई हमें
0: जी
1: किस आसमान तक ले जाती है। एक लेखक जब वो लिख रहा होता है, चाहे रात के 2 बजे वो सो रहा है और आंख खुल गई और कुछ ख्याल आया मन में
0: जी,
1: क्या वो लेखक उसी समय उठ के उसको नोट करता है, या वो सोचता है कि ये ख्याल तो मैं सुबह भी लिख पाऊंगा, क्या होता है?
0: सर, ख्याल की उम्र बहुत कम होती है
1: जी,
0: बहुत कम होती है उम्र। अगर वो आया तो उसी वक्त का है, अगर वो चला गया तो फिर वो वापस
1: कभी नहीं आएगा।
0: वक्त की तरह है ख्याल भी,
1: यानी कि उस ख्याल को हमें लपकना होगा।
0: यस,
1: अब टेक्नोलॉजी है, पहले तो शायर के पास पेन और पेपर होता था, लाइट जलानी है सब कुछ, अब तो मोबाइल है
0: जी,
1: और मुझे लग रहा मोबाइल के बगैर तो कोई जिंदा नहीं रहता, और फट से हम उसको वॉइस नोट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं?
0: सर, पहले तो ये था कि डायरी में लिख लिया करता था, कभी डायरी अवेलेबल हुई तो इतने में ख्याल मिस हो जाते थे, फिर धीरे धीरे कमाना शुरू किया, फोन लिया, अपडेट हुए, फिर
1: वो तो आपने बता ही दिया क्या मैंने कमाना शुरू कर दिया।
0: सो फिर पता चला कि हाँ, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, तो कीप नोट मैं यूज करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि कीप नोट्स में रखें, बिकॉज वो उसमें जीमेल जब आप डालेंगे तो वो कभी डाटा मिस नहीं होता,
1: ऑटो सेव है,
0: वो ऑटो सेव है और ताउम्र सेव रहेगा जब तक आपकी वो जीमेल बरकरार है। तो वो चीजें हैं, उसमें लिखने की मदद हुई कि ख्याल अभी लिख दिया, एक ख्याल 2 लाइन का था कि हाँ,
1: फिर उसको एलाबरेट बाद में कर
0: उसको बाद जब दोबारा उस पर निगाह पड़ेगी तो उसको दोबारा भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो वो ख्याल उतना मुकम्मल है
1: जी। राहुल जी, आपके शब्दों में, आपकी शायरी में
0: जी,
1: मैंने उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल देखा
0: जी,
1: मैं खुद उर्दू पढ़ा हूँ
0: जी,
1: ये उर्दू के शब्दों को आपने कैसे ग्रहण किया? क्या आपने उर्दू पढ़ी है, या उर्दू के शब्दों का मायने और उसका कैसे आप शब्दों का सही जगह पर सही इस्तेमाल करते हैं?
0: सर, इस चीज के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा मेरे स्वर्गवासी दादाजी को, बिकॉज वो भी उर्दू ही जानते थे
1: जी,
0: कि वो पुराने जमाने के थे, तो उनसे मैंने देखा कि वो हिसाब किताब अपना उर्दू में लिखते थे।
1: ठीक है,
0: तो कई बार पापा लोग भी नहीं समझ पाते थे कि भाई उर्दू में लिखा, हमें तो आएगा नहीं। तो वो एक चीज, एक प्लस पॉइंट भी थी, तो ठीक है, वहां से उर्दू समझ में आई कि एक एक बड़ी फैसिनेटिंग जुबान है, और उसका जो लहजा है बहुत बहुत ही अव्वल दर्जे का है, तो वो फैसिनेटिंग रही है उर्दू हमेशा से मेरे लिए। तो कुछ किताबें हैं, जॉन साहब को पढ़ा मैंने, और काफी चीजें थी जो मैंने पढ़ी, गालिब साहब को पढ़ा, हालांकि इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा तो जितना समझ आया उनको मैंने अपनी शायरी में लिखना शुरू किया, अपने वो वर्ड सीखे समझे अभी भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उर्दू जुबान सीखने का बहुत शौक है मुझे।
1: आपने अभी एक शब्द यूज किया गफलत
0: जी।
1: गफलत का मतलब है कि आप किसी मुगालते मत रहना, आप किसी धोखे में मत रहना। तो आपने सही शब्द का सही प्रयोग सही जगह पर किया है
0: जी।
1: मुझे इस बात पर भी खुशी है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और
0: बहुत
1: बहुत बधाई देता हूँ कि अम्बाला में ऐसे सितारे हमारे लिए बहुत आने वाले दिनों में चमकाने के लिए है, और हमारा अम्बाला इन्हीं लोगों से जाना जाएगा जिनमें आने वाले दिनों में राहुल अम्बालवी का नाम भी होगा। हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर है, मैं जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक का क्या आपने विमोचन किया है या करने वाले हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। अगर आप इसका विमोचन करने वाले हैं तो उसके बाद मैं आपसे एक और कविता जरूर सुनना चाहूंगा मेरे श्रोताओं के लिए, पर हम पहले ये बात करना चाहेंगे कि आप इसका विमोचन अगर करने जा रहे हो, कब करने जा रहे हो, क्या आप अम्बाला के आम लोगों को आमंत्रण देना चाहोगे उस विमोचन कार्यस्थल पर, तो आप कृपया उसके बारे में बताएं।
0: जी हाँ बिल्कुल, 28 जून को 11 बजे फरूका खालसा स्कूल के हॉल में इस पुस्तक का विमोचन है, और इसी के साथ ही एक ओपन माइक इवेंट भी है जिसमें अलग अलग शहरों से और भी शायर आ रहे हैं, यंग शायर आ रहे हैं, उसमें से कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ अननोन हैं जिन्होंने पोस्टर देखा और उस चीज तक मेरे तक पहुंचे, और बहुत खुशी की बात है कि अम्बाला से 5-6 नए राइटर्स भी हैं सर जो आ रहे हैं उसमें
1: जी।
0: सो 28 जून जो भी श्रोता मेरी आवाज सुन रहे हैं जो पढ़ने लिखने और लिटरेचर में इसमें दिलचस्पी रखते हैं शायरी में, तो वो 28 जून को 11 बजे फरूका खालसा के हॉल में जरूर पहुंचें और देखें कि अम्बाला में भी ऐसा कल्चर हम शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी लिखने वाले बहुत बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, तो एक हम यंगस्टर्स की तरफ से अपने साहित्य को या कुछ भी है उसको बचाने की एक कोशिश है कि हाँ यंगस्टर भी फोन को छोड़कर या बाकी बुरे कामों को छोड़कर इस सही दिशा की ओर चलें, क्योंकि किताबें बहुत कुछ देती हैं, आज नहीं देंगी लेकिन कल जरूर देंगी, और ये मेरी कोशिश है कि हर जितने भी युवा हैं पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूं और आप भी पढ़ें। तो 28 जून को फरूका खालसा के हॉल में लफ्ज़ो लहजा जो है हमारे उस चैनल का नाम है जिसमें हम ओपन माइक इवेंट स्टार्ट करेंगे, सो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जरूर पहुंचें, और सबको हाथ जोड़कर इसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप लोग जरूर पहुंचे वहां।
1: जी श्रोताओं, एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूं, राहुल अम्बालवी अपनी जो पहली उनकी पुस्तक है, काव्य संग्रह है या आप गजल संग्रह है आप इसको कह सकते हैं, जो प्रकाशित हुई है आर के पब्लिकेशन की ओर से, इसका विमोचन होने जा रहा है 28 जून 2026 को सुबह 11 बजे फारूका खालसा स्कूल के सभागार में, जहां पर हमारे और भी युवा लेखक जो है युवा एक लेखक जो होंगे उस पे, और जो अपनी कविताएं आपको सुनाएंगे, और साथ में आप रूबरू होंगे हमारे अम्बाला के नए सितारे अम्बाला राहुल अम्बालवी से, और उनके शब्दों से आप जब रूबरू होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो शब्द आपके दिल को छुएंगे, और हम सब का दायित्व है, फर्ज है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें, खास करके युवाओं को प्रोत्साहित करें, और ये इस कार्य से हम अपने युवाओं को किसी नशे से दूर कर सकते हैं, मोबाइल की एडिक्शन से दूर कर सकते हैं, और पुस्तकों की और हम उनको गामजन कर सकते हैं, और उम्मीद यही है कि ये कार्यक्रम इनका सफल हो। और अंत में राहुल अम्बालवी जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल की और गहराई से जो आपने कोई कविता लिखी है हमारी श्रोताओं को सुनाए, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम का समापन करेंगे।
0: जी बहुत शुक्रिया सर, रेडियो विदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं का भी बहुत शुक्रिया। एक आज के प्रोग्राम की आखिरी एक पेशकश है जो मैं पेश करूंगा कि अब जज्बात लिखूंगा।
1: जी अब जज्बात लिखूंगा
0: जी।
1: अच्छा,
0: और उसको शुरू करता हूँ कि लिखने हैं वो एहसास जिनकी आजकल कोई बात नहीं करता, कि लिखने हैं अब वो एहसास जिनकी आजकल कोई बात नहीं करता, जो यार के कहने पर दिन को दिन और रात को रात नहीं करता।
1: क्या बात।
0: और करता तो है जमाने बातें इश्क और मोहब्बत की बे इंतहा, कि करता तो है जमाना बातें इश्क और मोहब्बत की बे इंतहा, जिस्मों को नोचते हैं लोग यहाँ कोई आंखों से बात नहीं करता, और खामोशी को आजकल छोड़ देने की निशानी समझते हैं लोग।
1: खामोशी को
0: आजकल छोड़ देने की निशानी समझते हैं। मतलब अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं और चाहते हैं कि सामने वाला कोई मनाए, तो उसको लगता है कि इसका मन भर गया, छोड़ देते हैं
1: जी।
0: कि खामोशी को आजकल छोड़ देने की निशानी समझते हैं लोग, इस खामोशी के नीचे दबे कोई अल्फाज नहीं समझता।
1: क्या बात।
0: और शहर में शोर हो उनके आने का तो किसी को इश्क की इजाजत ना दीजिएगा। कि शहर में शोर हो उनके आने का तो किसी को इश्क की इजाजत ना दीजिएगा। सुना है उनसे मिलकर कोई हफ्तों तक बात नहीं करता। और आखिरी शेर है कि
1: क्या बात है, कहां से आप कहां तक लेके आए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और शर्फ समझते हैं गौरव, कि शर्फ समझते हैं तुझसे राबते में आने वाले किस्मत को अपनी
1: जी।
0: कि शर्फ समझते हैं तुझसे राबते में आने वाले किस्मत को अपनी, सजा देता है तू अपने दिल की, किसी की मजबूरी और हालात नहीं समझता।
1: क्या बात,
0: किसी की मजबूरी और हालात नहीं समझता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, मन तो नहीं करता है राहुल जी को जाने देने के लिए, पर हर एक शुरुआत का एक अंत होता है, तो हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे, आप अंबाला से प्यार कीजिए, अंबाला के लोगों के साथ प्यार कीजिए, अंबाला के इतिहास के साथ प्यार कीजिए, अंबाला के उन जगहों से प्यार कीजिए जहां से हमारी पहचान है। और हमारी पहचान हमेशा युवाओं के हाथ में होती है, युवाओं से देश बनता है, और युवाओं को अगर हम प्रोत्साहित करें तो हम जरूर अपने देश को, साथ में अपने प्रदेश को आगे की ओर ले जाएंगे। हम रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों की ओर से, रेडियो वितस्ता टीम की ओर से राहुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही लिखते रहें और आप रेडियो वितस्ता पर हमेशा आएं, और हम आपकी बात को, आपके दिल के जज्बात को रेडियो वितस्ता के माध्यम से सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाएंगे। और साथ में हमारा ये रेडियो पूरे विश्व में सुना जाता है और हम आपकी आवाज इस समय पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, पर मकसद हमारा अंबाला होता है, बात अंबाला की होती है, और ताकि पूरे विश्व में अंबाला सर्वोपरि रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं,
0: बहुत शुक्रिया,
1: तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आप श्रोताओं को
0: जी
1: आखिर में क्या कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग 28 जून 2026 को फरूका खालसा स्कूल 11 बजे जरूर पहुंचें, जो सुन रहे हैं प्लीज, और देखिए कि वहां कितने लोग सुनने वाले हैं, कितने लोग सुनाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए और सुनना शुरू कीजिए लोगों को। बहुत शुक्रिया।
1: जी हाँ श्रोताओं, मुझे भी आप दीजिए इजाजत, मैं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भरत सोपोरी, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ रेडियो वितस्ता पर प्यार बनाए रखेंगे। आपका साथ हमारे लिए बहुत अमूल्य है, आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सदियों का सफर तय करके जो बहती आई है वो मोहब्बत की कहानी सुनाने आई है। ये वितस्ता की लहरें हैं जनाब, जो रेडियो की तरंगों से दिलों को दिलों से मिलाने आई है, दिलों को दिलों से मिलाने आई है।
1: नमस्कार, आप सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई दोपहर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला आपका हमसफर भरत सोपोरी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना चाहिता स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो का, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी। वैसे भी जब भी फरमाइश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस कुछ चुनिंदा गाने बजेंगे और सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हमारे रेडियो वितस्ता का मिजाज थोड़ा अलग है ना, है ना?
0: बिल्कुल कृष्णा, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर गाने नहीं बजाते। गाना बजाना तो एक जरिया है, असल में हम आपके दिल के जज्बातों को, आपकी दबी हुई भावनाओं को शब्दों का रूप देकर आप सभी तक पहुँचाते हैं।
1: हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इन रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ऐसा पुल बनाना है जहाँ दूरियाँ मिट सके। हम तो बस एक जरिया है दिलों को दिलों से जोड़ने का। आपकी खुशियाँ, आपकी यादें और आपकी मोहब्बत सब कुछ सिमट कर लाता है यह शो।
0: तो बस अपने दिल के तार हमारे साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी फरमाइशों का पिटारा अब खुलने वाला है। तो चलिए शुरू के इस सुहाने सफर का आगाज करते हैं और आज की पहली फरमाइश लेते हैं। पहली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। सईद मसरूर सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से गीत। गीत के बोल है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत और करते हैं आगाज आज के फरमाइशी गीतों के सफर का।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधू। बंसीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जजबीर सिंह संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का गीत। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से आई है, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जहां प्यार मिले से गीत। गीत के बोल है चले जा चले जा। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए पेश है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्र रूप नगर बब्याल अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सहरा का गीत। गीत के बोल हैं तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाएं, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के जरिए आई है, और हमारे पास ये फरमाइश भेजी है संजीव कुमार राणा खेलन से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रतन से गीत, गीत के बोल है अखियां मिला के जिया भरमा के। इस गीत को आवाज दी है जोरा भाई अंबाला वाली ने। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायड़े, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी। इसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो रीजे पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से गीत। गीत के बोल है अनहोनी को होनी कर दे। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, किशोर कुमार और अन्य कलाकारों ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मेरठ से। भेजने वाले श्रोता हैं किरण और उनके साथ अन्य श्रोता हैं पिंकी, सुमन और ममता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झुमके का ये गीत। गीत के बोल हैं ये शमा तो जली रोशनी के लिए। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी के नाम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई महाराष्ट्र से, भेजने वाली श्रोता है गीता, सुनीता, किरण, अमित, राजेश, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से गीत। गीत के बोल हैं, ले तो आए हो सपनों के गांव में। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाली श्रोता है प्रेरणा, दीनू, पिंकी और अनूप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत। गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आपने आज का ये कार्यक्रम पहली बार सुना है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के लिए, हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आपको लिखना होगा गीत के बोल और अपना नाम, साथ में आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं, आप उनके नाम भी स्पष्ट लिखें और हम उन सभी नामों को आपके फरमाइशी गीत के साथ बोल देंगे। आपको अपनी फरमाइश भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजे वाले श्रोता है रणधीर भांगड़, इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी से गीत। गीत के बोल है, बाहों में बाहें डालकर खेलने का मौसम आया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिली का गीत। गीत के बोल हैं आए तुम याद मुझे, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं के लिए ले आ रहे हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है खेतल राजस्थान से। भेजने वाले श्रोता है लवीना शर्मा, धीरज शर्मा, हिताक्षी शर्मा और ओम शर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से गीत। गीत के बोल भी है अखियों के झरोखों से। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निशा सलमानी, इनके साथ अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे इतना गुमान कर। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर ने। तो लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये गीत। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यही हो रहा है समाप्त। आप आनंद लीजिए इस आखिरी गीत का और हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे आशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अभी कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8816904904। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम राम राम हरियाणा के लिए।

0: सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एज यूजुअल मैं भारत सोपोरी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से और आप सभी से मैं रूबरू हूं। सामुदायिक रेडियो रेडियो वितस्ता जो अम्बाला छावनी से प्रसारण करता है, मैं स्वागत करता हूं पैनल पर ललित जी का, प्रीतम जी का और गुरविंदर जी का। साथ में आज हमारे जो मेहमान जुड़े हैं, अभी मैं जब और नाम से जानूंगा, मेरे पास जो जानकारी है वो है ग्राम तत्तारपुर पहवा से साधु सिंह जी। कल भी हमारे साथ साधु सिंह जी थे बट व्यक्ति बदल गए और नाम सेम रह गए। ये बहुत अच्छी बात है, यही हमारा व्यक्तित्व है और यही हमारी पहचान भी है। हम जो भी काम करते हैं, नाम बेशक हमारा एक जैसा हो पर हम काम अलग अलग करते हैं और हम काम से ही पहचाने जाते हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूँ अपने श्रोताओं का भी जो हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं और हमारे सामुदायिक रेडियोज पर भी सुनते हैं। जैसे इस समय हम लाइव है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से जो अम्बाला से अपने लोगों को जोड़ता है और हम लाइव है रेडियो अपना से जहां चरखी दादरी में प्रीतम जी उसका संचालन करते हैं और साथ में रेडियो गोंदर करनाल से और गुरविंदर जी हमें हमारे साथ शो में बने रहते हैं, ये बेशक सुनते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो केवल सुनता है और वह अच्छा व्यक्ति नहीं होता है जो बोलता है। और जब शो शुरू होता है तो मैं बोलना शुरू कर देता हूं, इसके लिए भी आप सभी से मैं माफी चाहूंगा। पर जो कार्य दिया गया है जब तक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ यहां जुड़ते हैं, फिर मैं अपने शब्दों को पीछे रख लेता हूं। आइए आज के दिन की जानकारी देते हैं। आज है 24 जून 2026 बुधवार, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, 2083 विक्रम संवत। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने देशवासियों को विदेश में भी और देश में भी बताना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी हिंदी तिथि की जानकारी भी होनी चाहिए। मकसद हमारा यही है कि आज अधिक ज्येष्ठ महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष की दशमी है, 2083 विक्रम संवत है। और आज खास दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन इन डिप्लोमेसी। ये ललित जी बाद में इस विषय में हमें बता सकते हैं कि इसके कितने बड़े मायने हैं और डिप्लोमेसी में महिलाओं की भागीदारी जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के मेहमान साधु सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आज हमसे जब जुड़ेंगे,
1: आज के मेहमान
0: माफ कीजिएगा मैं आवाज कम कर देता हूँ जी, हम आज आप से इस कार्यक्रम में सुनेंगे आपकी जो जीवन यात्रा है और साथ में आप जब से अपने ग्राम के सरपंच बने हैं उसके बाद हम आपसे जानेंगे कि आपने अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कितने कार्य किए हैं और उन कार्यों के साथ साथ आपने कितना अच्छा काम किया है। हमारे लोग भी जानेंगे, हम भी जानेंगे और हमारे श्रोता जो गांव में बैठे हैं इस समय सुन रहे हैं वो भी जानेंगे। मैं अपनी वाणी को फिलहाल विराम देता हूं क्योंकि 3 मिनट मैंने पहले लिए। मैं गुरविंदर जी आपका स्वागत करता हूं, ललित जी, प्रीतम जी और आज के मेहमान का। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा प्रीतम जी के पास।
2: नमस्कार सभी को, सभी श्रोता व सभी दर्शकों को। और भारत जी, आज हमारे साथ जो पैनल में है वो परथला विकास खंड है
0: जी, जी
2: पलवल डिस्ट्रिक्ट का, और वो ये सरपंच है सुरेंद्र कुमार जी। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे इनके गांव के ग्राम सचिव भी वेद प्रकाश जी भी, और हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ेंगे। वो नंबर हमारा है वो 88 16 904 904। हमारे साथ ये दो हस्तियों के साथ साथ हमारे श्रोता भी जुड़ेंगे। तो मेरी सभी श्रोताओं से अपील है कि इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ के और अपनी कोई भी समस्या या आपका कोई भी सुझाव जिससे आपके गांव, किसी गांव का विकास में आप भागीदार बन सकते, तो आप अपने सुझाव भी दें और अपनी कोई शिकायत हो तो वो भी बताएं, हम उसको अधिकारियों के सामने रख के आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे
0: जी। बहुत
2: अब मैं चलता हूँ ललित जी की, क्योंकि अब मैं भारत से चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की ओर
0: जी,
2: और
0: जी
2: ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे सिडनी।
0: इससे पहले ललित जी बोले
3: जी, मैं नमस्ते
0: ललित जी, ललित जी
3: दर्शकों को,
0: ललित जी आप के बोलने से पहले मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैंने आज के मेहमान का जो इंट्रोडक्शन है वो गलत दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ललित जी आप अपनी बात रखिए, आपका स्वागत है
3: जी। धन्यवाद भारत जी।
1: जैसे कि आप बोल ही रहे थे कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम, क्योंकि परमात्मा ने भी हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं, इसका एक रीजन है। तो जैसा कि आपने बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी है, जिसे हिंदी में कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिलाओं का दिवस है,
0: जी
1: तो आज हम इसे मनाते क्योंकि ये दिन महिलाओं के नेतृत्व, साहस और योगदान को सम्मान देता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में यह दिन घोषित किया था ताकि महिलाओं की बराबरी, लाइक उनकी बराबर भागीदारी, कूटनीति, शांति, विकास और मानवाधिकारों में मान्यता मिल सके। इस दिन का महत्व यह है कि यह याद दिलाता है जब महिलाएं निर्णय निर्माण की मेज पर होती हैं तो नीतियां ज्यादा समावेशी, संतुलित और प्रभावशाली बनती हैं। यह दिन महिलाओं के नेतृत्व, साहस और वैश्विक संवाद में उनके योगदान को सलाम करने का अवसर है। तो सलाम है ऐसी महिलाओं, नतमस्तक है हम सब महिलाओं को, जो कि अपने अपना योगदान है जो समाज को, देश को, विश्व को दे रही है। तो इसी के साथ अब मैं आग्रह करूंगा प्रीतम जी को, आप अपनी बात रखें।
0: मैं इससे पहले कहना चाहूंगा, ललित जी आपने बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि ये हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा शो तो अब इंटरनेशनल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया से आप हमें दिखते हैं पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से भी हमें मैसेज करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप ये बात एक बार फिर अपनी देसी भाषा में कहें तो कितना अच्छा रहेगा।
1: देसी भाषा में तो देखो जी, बात यह है कि महिलाएं हैं जो सी अपना अपना योगदान जो है दे रही हैं अपना देश में आगे बढ़ने के लिए। और महिलाओं का आगे बढ़ना मतलब जी हमारा आगे बढ़ना है, मतलब महिला आगे बढ़ती है तो पुरुष, और केवल पुरुष ही नहीं, पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा घर मोहल्ला, हर कोई, सब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आधी आबादी है देश की। तो क्यों ना इनको भी जो है बराबर मौका मिले, बराबर की हिस्सेदारी जो है ये अपनी दिखा सके। और महिलाएं कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर और कुछ क्षेत्र में यकीनन जो पुरुष हैं उससे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और बस इसी संदेश के साथ मैं सलाम करता हूँ महिलाओं को जो देश और राष्ट्र की प्रगति में अपना जो है हिस्सा, योगदान दे रही हैं।
0: जी प्रीतम जी,
2: ये जो ललित जी ने बात बताई ये सही बात है, क्योंकि आज के युग में अगर हमारे कहीं पे भी उन्नति करनी है हमने, तो एक महिला का हाथ जरूरी है, और महिला है तो ही उन्नति है। ये हमारे समाज की, पहले होता था कि बोला पुरुष प्रधान होता था, लेकिन अब तो महिलाएं कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ी हैं, और हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे स्टेट की और हमारे भारत देश की उन्नति में महिलाओं की भागीदारी 50% से भी, मैं तो कहता हूँ, ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि अब महिलाएं, पहले ऐसा होता था महिला फाइटर नहीं, जहाज नहीं उड़ाती थी, आज महिला फाइटर जहाज भी उड़ा रही हैं। तो हम महिलाएं हमसे बहुत आगे निकल रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है।
1: जी, महिलाएं
2: तो ऐसी महिलाओं को
1: केवल
2: सलाम कर।
1: केवल जहाज नहीं उड़ा रही, जो जहाज उड़ाने वाले हैं ना उनको भी, इनके भी साथ खड़ी हैं तभी वो जहाज उड़ा पा रहे हैं।
0: चलिए, हमारे साथ डॉक्टर
2: उड़ा भी रही हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत।
0: जी
2: हाँ, हमारे साथ प्रोग्राम एक जानकारी देना चाहता था।
0: जी जी
2: हमारे अभी जो फाइटरों की ट्रेनिंग हुई थी, हमारे दादरी जिले से दो लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन हो फाइटर फ्लाइंग ऑफिसर में।
0: जी जी
2: हमारे दादरी की एक भागी गांव की लड़की है और एक छपार गांव की लड़की है।
0: चलिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपके बगैर हम अधूरे होते हैं, जब आप आते हैं तो हमें लाइट आती है, और हम चाहेंगे कि आप हमें सबको, श्रोताओं को और पैनल पे जितने भी लोग हैं उनको संबोधित करें और हमें रास्ता दिखाएं हम आगे कैसे चलें। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता।
3: राम राम। राम राम हरियाणा नामक इस सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सब मित्रों का, जो कम्युनिटी रेडियो के साथी हैं उनका भी, और जो इन स्टेशनों के माध्यम से जिन श्रोताओं तक हम हरियाणा भर में पहुंच पा रहे हैं, और हरियाणा भर में ही क्यों, ललित जी की मदद से हम अपनी ऐप के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में और दुनिया में जहां कहीं इंटरनेट चलता है, जहां कहीं हरियाणा में हरियाणवियों की रुचि है, जहां कहीं लोग बैठे हैं, उन सब तक हम पहुंच रहे हैं। और जिन तक हम पहुंच रहे हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, उन सबको मैं प्रणाम कहता हूं। और आज जब मैं आपको प्रणाम कह रहा हूं ललित जी, तो ये विशेष प्रणाम इस मायने में है कि मैं इस समय ब्रह्म सरोवर के किनारे पर बैठा हूँ। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यपरिधि में आने वाले तीर्थों की निगरानी कमेटी, उनका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सफर में था, यात्रा में था, तो मैंने सोचा कि चलती गाड़ी में बात करने से बेहतर है कि एक ठिकाने पर बैठ जाया जाए, और वो बगल में जब कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर आ जाए तो स्वाभाविक है कि वहां ब्रेक लगाना अच्छा ही लगता है, क्योंकि मेरा तो बचपन यहाँ बीता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि रेडियो अरावली भी हमारे साथ जुड़ गया है, एफएम भारती हमारे साथ हैं ही, पहले से मैं देख रहा हूं, और पलवल हमारे साथ हैं, प्रीतम जी और हमारे भारत जी तो हैं ही, तो कुनबा कुनबे के बहुत सारे मित्र सब जो इस समय यहाँ, मैं जब मैं कहता हूँ कि मैं कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर बैठा हूँ, तो एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में जहां भगवद गीता का उपदेश दिया गया, उस ज्योतिसर की धरती को छूकर आ रहा हूं। और कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा जिसपति के तट पर ये स्थान स्थित है, और पृथुदक पिहोवा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व ये है कि जैसे गया में, गया जी में सब लोग पिंडदान करने पितरों का जाते हैं, उसी स्तर का, उसी आध्यात्मिक महत्व और ऊर्जा का ये स्थान पितरों के तर्पण के लिए पिहोवा पृथुदक माना जाता है, प्राचीन तीर्थ है। मिले के सब सरपंच और उनके ग्राम सचिवों के साथ एक बैठक थी ललित जी, उस बैठक का जो विषय था उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आज के जो हमारे मेहमान सरपंच हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या बता दिया अपने गांव के बारे में, उसके अलावा वो क्या बताना चाहते हैं, एक बार वही आ जाए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्यों ठीक रहेगा ना प्रीतम जी?
0: बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया जी। ततारपुर से हमारे साथ आज जुड़े हैं ग्राम सरपंच श्री सुरेंद्र कुमार, मुझे माफी दीजिएगा पहले मैंने नाम गलत पढ़ा था, और साथ में हमारे साथ होंगे ग्राम सचिव श्री वेद प्रकाश जी। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और इस शो में हम आज आपकी बात सुनेंगे।
4: योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर।
0: मेरी वॉइस नहीं आ रही है, चलिए प्रीतम जी आप शुरू करिए फिर। हेलो जी प्रीतम जी आप बोलिए।
2: भारत जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है
0: जी। बस सुरेंद्र जी आपका स्वागत है,
2: हमारे इसमें जुड़े हैं
0: जी। जी सुरेंद्र जी आपका स्वागत है,
2: आप आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। सुरेंद्र जी आपके गांव के बारे में बता रहे
1: लगता है सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज है जो वो पहुंच नहीं पा रही है।
2: तब तक गुरविंदर जी
3: हाल यही लगता है हमको। चलिए सुरेंद्र जी कुछ बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं।
0: जब तक सुरेंद्र जी बोल सकते हैं तो
3: गुरविंदर जी जरा चेक करिए क्या मसला है, ठीक कराइए अगर गड़बड़ है तो कुछ। और तब तक भारत जी अगर इजाजत हो तो मैं जो करके आया हूं वो बता दूं आज सबको
0: आपके। हाँ प्लीज सर, प्लीज सर आगे बढ़िए।
3: सुरेंद्र जी दोबारा जुड़ के और हमको बता दें तो बेहतर रहेगा, ऑडियो उनका आ जाए। इन दिनों भारत जी, सभी श्रोताओं को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के निर्देश पर जून का पूरा महीना उसे एनीमिया मुक्त भारत जो मिशन है, एनीमिया मुक्त भारत मिशन, उसके अंतर्गत एनीमिया उन्मूलन माह इस रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में, और हरियाणा में भी ग्रामीण अंचल में महिलाओं को, खास तौर पर जो धात्री माताएं हैं, खास तौर पर बेटियां जो हैं और बच्चे, उनके खून में अगर आयरन की कमी है, वो एनीमिया ग्रस्त हैं, तो उनकी पहचान करके, एक अभियान चलाकर पहचान करके, जांच करके, फिर उन्हें सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वे निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। और लक्ष्य ये है इस अभियान का कि ये जो हमारी लक्षित आबादी है, मैं फिर से दोहराऊंगा, महिलाएं, बच्चे, खासतौर पर बेटियां और धात्री माताएं, इन सबको हम एनीमिया मुक्त करना चाहते हैं, उनके रक्त में लोह की, आयरन की कमी न रहे, यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसका एक अभियान देश भर में एक मिशन के रूप में चलता है और उसी के अंतर्गत इस महीने को खास तौर पर इस काम के लिए तय किया गया है, ग्रामीण अंचल में पंचायतों के लिए। उसी अभियान के तहत आज कुरुक्षेत्र जिला के जनप्रतिनिधियों यानी सरपंचों और उनके जो सचिव होते हैं उनकी एक बैठक हम लोगों ने की पिहोवा में, वहां के खंड कार्यालय में, और मेरे साथ हमारी सहयोगी डॉक्टर नीलम भी थी जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं इस काम के लिए। तो एक मोटा सा वहां पर जो एक चित्र आया ना, अगर आप लोग कहें तो मैं बताता हूं कि क्या दृश्य है। सरकार ने कहा था कैंप लगाओ, टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद टॉक, लोगों से बात करो, फिर ट्रैक भी करो, गोली तो ट्रीट करो और ट्रैक करो, चार टी की अप्रोच है इसमें। टी, पहला टी टेस्ट, दूसरा टी टॉक, चौथा टी है ट्रैक। तो इन चार टी पर आधारित एक रणनीति से हरियाणा को हम एनीमिया मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में जब पहला टी आया तो कुरुक्षेत्र जिले में जब 25,000 नागरिकों का, ग्राम्य हरियाणवियों का परीक्षण किया गया, तो वहां की संबंधित स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डॉक्टर मंगला हमारे साथ उस बैठक में थी, तो उन्होंने कहा कि 50-60% यानी आधे से अधिक ग्राम्य हरियाणवी कुरुक्षेत्र जिले के, उनका रक्त जो है वो उनका एचबी लेवल कम पाया गया, यानी वो हैं, महिलाएं ज्यादा हैं और वो लक्षित आबादी है। तो सिनेरियो चिंताजनक है। एक ये दृश्य मैं बताना चाह रहा था। सुरेंद्र शर्मा जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा हाँ कर दीजिए।
5: यस सर।
3: हाँ, ये बनी ना बात। अब सुरेंद्र शर्मा जी, जिला कौन सा आपका?
5: सर, जिला पलवल, ब्लॉक पृथला।
3: पृथला के सुरेंद्र जी, आप ये बताइए, क्या आपके गांव में इस महीने में जो हम चला रहे हैं अभियान एनीमिया समाप्त करने का, उसके तहत कोई गतिविधि हुई है?
5: हाँ सर, उसके तहत अपना एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया था और पूरे गांव का सर सर्वे किया था। हमारे गांव में सर एक भी केसेस नहीं है ऐसे।
3: एक भी एनीमिक नहीं मिला?
5: नहीं सर।
3: तालियां बजाने के सर
5: मेरा गांव टीबी मुक्त है और सारे नशा मुक्त गांव है सर। छोटा गांव है जो कि इंडस्ट्रीज चारों तरफ गांव के हैं सर। और मेरा गांव सर पहला गांव बना है पूरे इंडिया का जिसने डिजिटल ई ग्राम सभा करी है सर। मैं सर सरपंच होने के साथ साथ दिल्ली में ग्रैंड हयात होटल में जनरल मैनेजर लाइजन एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हूँ सर। तो सर वही उसी लेवल पे सर काम गांव में सेवाएं दे रहा हूँ और सर मोस्टली काम सीएसआर एक्टिविटी में सर गांव में करा रहे हैं और आने वाले 6 महीने के अंदर हमारा गांव पलवल जिले का मॉडल विलेज बन जाएगा सर।
3: चलिए, तो अद्भुत बात बताई आपने। और
5: सर सचमुच सर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक प्राइवेट कंपनी से जितने भी हमारे बीपीएल परिवार हैं उन सभी बेटियों की फीस पूरे साल की उस कंपनी से दिलवाता हूं सर, ताकि हमारी बेटियां पढ़ सकें और आगे बढ़ें और हमारा देश भी तरक्की करे सर।
3: क्षण भर के लिए रुकिएगा, मैं जरा आपका अभिनंदन कर दूं कायदे से। भारत जी की अनुमति से, प्रीतम जी की अनुमति से, ऑस्ट्रेलिया से, ललित जी की अनुमति से आइए हम आज के अपने मेहमान सरपंच का अभिनंदन करें। जहां मैं एनीमिया मुक्त या एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत कुरुक्षेत्र जिले की एक तस्वीर रख रहा हूं कि 50% से अधिक, 50-60% के बीच परीक्षण जिनका हुआ, जांच जिनकी हुई, ऐसे लोग एनीमिया से ग्रस्त पाए गए। वहां आज के हमारे मेहमान सरपंच ने ये कह के कमाल कर दिया है कि इनके गांव में नहीं पाया एक भी एनीमिक। ये अद्भुत है। कॉलर कोई जुड़े हैं तो साहब बताइए कौन है। हेलो, श्रोता को जोड़े।
6: हेलो,
3: क्या भारत जी, आप श्रोता की आवाज
2: बोल रही है सर? आवाज आई सर श्रोता की।
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपना नाम बताइए।
6: हेलो
0: जी, आप अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं।
6: मैं तरफिदा से बोल रहा हूं जी। हेलो,
0: हाँ जी बोलिए बोलिए।
2: लाल जी बोलिए।
6: हेलो, मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पे सुनने है काम, नरेगा जो गांव की तरक्की के लिए जो कार्य किए जाते हैं, गांव की जनता है जो बेरोजगार है, गरीब परिवार है, उनकी मनरेगा कागजों में है, वहां चल नहीं रही
0: जी। वीरेंद्र सर,
2: हेलो देवीलाल जी, आप कैसे
3: और इस बारे ये, हाँ, ये इनकी बात पूरी हो जाए, इनको और कुछ जोड़ना है तो ये कह दे, फिर मैं बताता हूँ।
6: हेलो,
0: आप अपनी बात पूरी कर दीजिए।
2: लाल जी बताइए,
6: मैं यूँ कह रहा हूँ साहब के कई कई गांव ऐसे हैं दादरी जिले के अंदर जहाँ विकास के नाम पर बिल्कुल सुनने है, वहाँ मनरेगा लिखित में है लेकिन वैसे नहीं चल रही। और
3: अब मैं उत्तर
6: दूँ, बेरोजगार जनता क्या करेगी?
3: अब मैं उत्तर देता जी, आपकी बात सुन ली, आप बात सुन ली गई है देवीलाल जी, बहुत धन्यवाद देवीलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने फोन किया, हमें अपने हैं जो हमें फोन करते हैं और के प्रधानमंत्री रहे।
6: मैं तो मुद्दा उठाना चाहता हूँ जी, मेरी आवाज दूर तक जाए, मैं तो यही चाहता हूँ किसी भाई का भला हो, बेरोजगार युवक जो है।
3: अब आपने मुद्दा उठा लिया, बात सुन ली, बहुत धन्यवाद आपका। स्टूडियो देवीलाल जी को होल्ड पे रखने के बजाय उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैं देवीलाल जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, समझने की बात यह है देवीलाल जी कि गांव में विकास का एक ही शस्त्र नहीं है, केवल मन गांव में विकास अलग अलग गांव में विकास केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत आने वाले धन से, अनुदान से होता है। राजस्व वो जमीन के ठेके हो सकते हैं, तालाब के मछली पालन से आने वाला पैसा हो सकता है, कोई और तरह का टैक्स अगर पंचायत ने गांव में लगाया हो उससे आ सकता है। तो पंचायत जब विकास के काम कराती है तो वो अलग अलग मदों में अलग अलग रास्तों से प्राप्त होने वाले धन और राजस्व क्या बताती है। कोई पंचायत ऐसी नहीं हो सकती जहां विकास के काम शून्य हो, ऐसी कोई पंचायत हो ही नहीं सकती। कारण है उसका कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अनुदान देते ही देते हैं, आप आबादी के हिसाब से
7: कुछ अनुदान मिलता है। तो अब बात आती है मनरेगा की, ठीक है ना, हो नहीं सकता ना ऐसा। तो
4: बिल्कुल सर,
7: मनरेगा गांधी नरेगा नाम से गांव के जरूरतमंद गरीब लोगों को रोजगार देने की जो योजना अनेक वर्षों से चल रही थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था, वो योजना इस महीने के अंतिम तिथि को समाप्त हो रही है। जैसे समाप्त होगा, मनरेगा समाप्त हो जाएगी और भारत जी राम जी नाम से एक नई योजना पारित कर चुकी है, हम उसको लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 जुलाई से हरियाणा समेत 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार, सॉरी 100 घंटे के बजाय
4: 100
7: का रोजगार देंगे।
4: मनरेगा 100 डेज का था सर,
7: मनरेगा में 100 दिन का देते थे, नई योजना में हम 125 दिन का रोजगार देंगे।
4: हाँ, 125 डेज का है सर, वीपी जी राम जी जो नई स्कीम आई सर,
7: वहां पर 100 दिन पर ये जो कह रहे हैं कि मनरेगा नहीं चल रहा और कुछ गांव में नहीं चल रहा, कुछ दिन से तो कहीं नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो योजना जा रही है और अब तैयारी नई योजना को लागू करने की है। तो ये समझिए कि 1 जुलाई से हर गांव में जारी हो जाएंगे कुछ चीजें, जारी होगी, कुछ और अधिसूचित नहीं बाकी हैं, वो 1 जुलाई से हरियाणा के, अब देश की बात ना भी करें हरियाणा की अगर बात करें, और सादरी के वजह 125 दिन का रोजगार देंगे। अच्छी बात जो इसमें जोड़ी जा रही है, एक बात का मैं जिक्र कर देता हूं, फिर अगले श्रोता कोई है तो उनसे बात करेंगे और सुरेंद्र जी की भी बात करेंगे, वो ये के पहले मनरेगा में जैसे गड्ढे खोद दो भर दो फिर खोद दो फिर भर दो रोजगार हो गया, ऐसे चलता था। योजना में रोजगार देने से पहले योजना बनेगी पंचायत में, ग्राम सभा में,
0: एक कॉल
7: उस योजना में, हाँ भारत जी सुनूंगा मैं कॉलर
0: जी,
7: नई योजना में भारत जी सुन रहा हूँ, कॉलर को खबर दे दीजिए मुझे, सभा में बैठ कर,
0: इसकी आवाज भी कट रही है,
7: प्लान बनाया जाएगा रोजगार देने का और इस बात पर जोर रहेगा, तो फिर कुछ एसेट्स बने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

दोस्तो वजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: अजमेर। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल, एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट हुआ निर्देशन भारत सोपोरी का।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे। एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुँचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटियां मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे, पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहाँ से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल न कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जान

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी वर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

0: मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा बख्शी जी का पहला गाना था और 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ था। किशोर कुमार ने इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर आनंद बख्शी की सुपरहिट फिल्में छाती चली गई। कुछ फिल्मों के नाम है फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह। आराधना वो फिल्म है जिससे राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ और उसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, जो सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी के लिरिक्स की नजाकत और खूबसूरती के चलते लोग उन्हें शब्दों का बाजीगर भी कहा करते थे। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में बॉलीवुड को करीब 4000 से अधिक गाने दिए। इन्हें लिखे गीतों के बोल इन्हें सरल और भावना प्रधान होते थे कि आम आदमी की रूह को छू लेते थे। हर मानवीय संवेदना के ऊपर अलग अंदाज के साथ इनके लिखे गीत सुनने को मिल जाते थे। यही वजह रही कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये उनके लिए लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा 41 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 बार के फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता रहे। आनंद बख्शी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गानों के जरिए वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। गायक बदलते गए और संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपने कलम का तिलिस्म बरकरार रखा।
1: ओ मेरी महबूबा।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, एसडी बर्मन, एस मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का।

शीश मराठा। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए

कहीं आकाश से घूमते घूमते जब ये आवारा बादल टूट जाते हैं तो हम यहां भीग जाते हैं। खुशनुमा माहौल चारों ओर नजर आने लगता है। जन्नत जैसा एहसास हम महसूस करते हैं और सिखा जाती हैं ये मासूम हवाएं जीने का

ये चाहते कभी बुरी नहीं होती हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह हमेशा जवान और पुरकशिश रहने का दावा करती हैं। तभी तो हर अंजुमन में तेरा जिक्र होता है खामोशी से। चुपचाप उतर जाती हो आंखों में आंसू की तरह।

जब तेरे सिर से सरकता रहा नीले रंग का दुपट्टा, हम हर पल संभालते रहे। जो तेरे बदन की खुशबू महफिल को मोतर कर गई, हम तेरे आंचल में छिप गए। तुम्हारे बदन से सिमटने की कोशिश भी की, शायद पास आते साथ रहते, मगर यह हो न सका। ख्वाब बनते गए और अक्सर बिखरते गए।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, जो अंबाला छावनी से प्रसारण करता है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से। अंबाला के लिए इस सामुदायिक रेडियो को स्वीकृत किया गया था 2023 में। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आज के प्रसारण अब हमारे यहीं पर संपन्न होते हैं, पर जाने से पहले आपसे एक खास विषय पर बात करेंगे और सुनाएंगे आज की खास पंक्तियां भी, और साथ में बताएंगे आज के दिन के बारे में और साथ में कल के दिन के कार्यक्रमों का विवरण भी। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02 और 7 सेकंड। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। श्रोताओं, सुरीली दुनू अपनी और अपनों की बातों और ज्ञान के इस खूबसूरत सफर में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे हैं आपका अपना स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। आज का दिन बेहद खास रहा, जहां हमने शुरू को तो जिया ही, साथ ही वैश्विक मंच पर महिलाओं के साहस और उनकी कूटनीतिक सूझबूझ को भी प्रणाम किया। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम दें। रेडियो वितस्ता के सभी कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होते हैं। कल सुबह एक नई किरण, नई उम्मीद और ढेर सारे तरानों के साथ आपसे इसी फ्रिक्वेंसी पर मुलाकात होगी। पर जाने से पहले एक खास लेख हमने तैयार किया है आप सभी श्रोताओं के लिए। वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कूटनीतिक वार्ताओं की मेज पर महिलाओं को सम्मान प्रतिनिधित्व मिले। इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं को कूटनीतिक और कूटनीति के शीर्ष पदों पर अवसर मिला है, उन्होंने जटिल वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में एक नया और मानवीय दृष्टिकोण पेश किया है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र के शोध बताते हैं कि जिन शांति समझौतों में महिलाएं वार्ताकार या हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल होती हैं, वे समझौते अधिक टिकाऊ होते हैं और उनके लंबे समय तक टिकने की संभावना 35% तक बढ़ जाती है। दूसरा, संकट प्रबंधन। महिलाएं अक्सर उन मुद्दों जैसे मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन को कूटनीति के केंद्र में लाती है, जिन्हें पारंपरिक कूटनीति में नजरअंदाज कर दिया जाता था। 2022 में इस दिवस की स्थापना के बावजूद आज भी वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की राह आसान नहीं है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु आपको हम बताते हैं। कांच की दीवारें, ग्लास सीलिंग। आज भी दुनिया भर में राजदूतों यानी एम्बेसडर्स और विदेश मंत्रियों के पदों पर पुरुषों का वर्चस्व है। कई देशों में महिलाओं को कूटनीतिक के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के लिए पुरुषों की तुलना में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। पूर्वग्रह और रूढ़िवादिता। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सुरक्षा रक्षा, कड़े कूटनीतिक फैसले यानी हार्ड डिप्लोमेसी केवल पुरुषों की वश की बात है, जबकि महिलाओं को सॉफ्ट कूटनीतिक जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित कर दिया जाता है। इसका निष्कर्ष ये है कि वैश्विक चुनौतियां जैसे युद्ध, जलवायु संकट और महामारियों से निपटने के लिए दुनिया को हर संभव दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम आधी आबादी को कूटनीतिक की मेज से दूर रखकर एक शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है, कूटनीति में महिलाओं का होना केवल न्याय का मामला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक भलाई और
प्रभावी कूटनीति के लिए बेहद जरूरी है। तो यह था आज का विषय और हम सभी इस विषय को बहुत अच्छे से समझें और हर एक महिला को चाहे घर का छोटा सा फैसला हो उसमें भी उनका फैसला आना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए और अगर उनका फैसला पुरुषों से अच्छा है तो उसको लागू भी करना चाहिए। हम सभी आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व में हम 2047 तक ऐसा देश बनेंगे जो हर दिशा में बहुत आगे होगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको हर दिन की तरह चार पंक्तियां सुनाता हूं और कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां यूं हैं, सुरों की लहर बनकर जो दिलों में उतर जाती है, सुरों की लहर बनकर जो दिलों में उतर जाती है, ये वितस्ता की लहर है जो हर शाम समर जाती है, ये वितस्ता की लहर है जो हर शाम समर जाती है। अब विदा लेते हैं आज के इस वादे के साथ दोस्तों, अब विदा लेते हैं आज के लिए इस वादे के साथ दोस्तों, कल फिर महकेगी ये महफिल जब सुबह बिखर जाती है। तो जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण बताता हूं। कल 25 जून 2026 बृहस्पतिवार को 5:58 पर सभा की शुरुआत होगी, वंदे मातरम से और लाएंगे प्रकाश प्रवाह। 6:00 भक्ति संगीत, 7:05 पर वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5 धर्मराज देशराज की कविताओं पर आधारित, और कल इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 सकारात्मक कहानियां और कल एपिसोड 20 होगा जिंदगी में आनंद ले, पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 फिल्मी किसे एपिसोड 6 काला पत्थर, हमने कल के लिए फिल्म चुनी है, इसको पेश करेंगे राहुल अलियान। 10:00 काव्य गोष्ठी सईना वर्मा के साथ, पेश करेंगे भारत सोपोरी एपिसोड 4 में। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7:00 सुनहरे पल एपिसोड बाला एसपी बाला सुब्रमण्यम पर होगा, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है मिले जुले गीत। आप जरूर हमें हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपना फीडबैक भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010, नंबर एक बार फिर 7056413010। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन 6:00 से 9:00 तक। कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।